0: मिङ्गाचुवेत तौ कासना नलिगुसिन्तिरिस पासामुख बनेका नचा रिगुस पालिका वंगिमंग
1: अरे अरे चैता जता निंग बसामुख यानि हम पिनै चैता गन्य पस कचम सज छम बिसुन जे मर जे ऑफिशियल लिखि रियल चिम्बि तबाकु चिल का कुन म खोज ने चंग की कंसत
0: निकब खै बिनिस तुमारी तैता माइटो
1: या या सिना काजा रिसुन रास्ता कुनन सेस्ता